संताप औ हट पटन मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख नारूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम एहन अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे भीख्या खाई। ऐसी दरगाह मिले सजाई रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दह सिर लंक गवाई। जिन सीता आंदी दौरू वाई रोवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया। एकी कारण पापी भया रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे है राजे कन पड़ाए। कर कर मांग है भीख्या जाए रोवे है किरपन संच है धन जाए। पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्नी है। बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतो जान, नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावण रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग। नाउ बीज बख्शीस बोल

है दूजे भाई बोले, दूजे भाई सदा दुख है नित नीर बरोले, गुरमुख नाम त्याई है मत तत कडोले, अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले, आपे परम भलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा नानक कि

मोहत किस हन्ने, सच पराणा हुए नाही, सीता कदे ना पाटे, नानक साहिब सचो सच्चा, टिचर जापी जापे महला पहला, सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर

नानक जो मर जीव्या सहलाया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बफड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, श्लोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग ना रही सरवर,

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेविए सदा सदा जो दे। नानक सोई सेविए जित सेविया दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई शुद्ध राम कली की वार। महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हौं तिस देवां मन आपना नित हिरदै रखां संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवां विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया पुत्रै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाय धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती माया का

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवां अंदरों अन्ना बारहों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वह चक्र बनाई।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग ना बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जा हंस सभा विचार कर देखन, ता बग्गा नाल जोड़ कदे ना आवे, हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा पालन जावे, उडरिया विचारा बगला, मत होवै मन लखावे, जित को लाया तित ही लागा, किस दोष दिच्चै जा हर एवै पावे, सतगुर सरवर रतनी परपूरे, जिस प्राप्त सो पावे, सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुकमावे, रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे, खाए खर्च रहे टूट न आवै।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन

दूजा तिस न बुझायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच।

मुर्गे मंगण सब बिख्या रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरादे संतन रे नार महला पंजवा अंध सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाय अवर सियाण पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीर्थ नाइय।

होगा हरख आनंद हुक्मे जपै निरोधर गुरमंद हुक्मे आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावै गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काड ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हट मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थी आ थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मजनागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर

अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खटे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले ओ बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओह अगम अजिता ओह प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्य हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता। श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधके तस्कर बैसह गाहे धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाहे महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संग संगी बैसते तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया अपनी कीमत आप आपे ही जातिया सब किश आपे आप आप उपन्या।

साली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुरु आखे सत्या करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुई जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली हो रे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत।

मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देव जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहाउ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

लाल दमोदर भगत बच्छल पैहारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी जेह सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बैकुंठ नहीं संसार निरपव कह कर बजावह तूर अनहद बजह।

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया। जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना। पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ। उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं। बेदी अले चक्र पुवंगा, भेटी अले राय नसंगा। चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा। जब कुंभक भर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना। बकतै बक शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया।

गुडी आकाश मदे परमियले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजै।

होए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन

परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र ले।

जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दुख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है आराध है, सेवक पाए करे, किल बिख दुख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दुख असाध नगर मह, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुगद निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर किरपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दुख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यो देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग

पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे भवन भवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपयो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रभ

नहि जानी हर गहने, हम बारक कौर देवस्तत तार हो, हम करहे प्रभु सिमरणे। तुम जल निद हर मान सरोवर, जो सेवे सब फलने। जन नानक हर हर हर हर बांचे, हर देव हो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल। सब दाल द पांच दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाऊ। हर का ग्रह हर आप सवारियू, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल। हर आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंद आनंद भये। हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले भये गलतान। हाल निहाल निहाल, नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन कथ कथा सुखवंती। सब किल विख पाप लहंती, हर हो लिखत लखंती रहाओ। हर कीरत कल युग विति उत्तम, मत गुरमत कथा पजंती। जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हो कुर्बानंती। हर कथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब भूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन तृप्ति, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल। तिस को हो बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाउ। हर का मार्ग गुर संत बतायु, गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो, निह कपट कमाव हो। हर की हर काल निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई। जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल, जन नानक को मत हर प्रभ दीनी। हर देख निकट हदूर, निहाल निहाल निहाल निहाल, निहाल।

क्या भाव है, मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते, सो सदा सदा तुद त्यावे। कवन योग कवन ज्ञान।

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

साध संग नानक परगास्यो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किस पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो।

अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु धूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल

हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम तन पाया,

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सम्हारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचै।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी, मेरे ठाकुर कै मन पाए पावनी।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

अब एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

एक जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाऊ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारी सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख नखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साक।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले है पर उपकारे संतै संत मिले मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारे मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारे राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं

साधु अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाऊ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साद आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी

राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

हूँ। हर मात पिता प्रित पाला, कर माया अगन नित मेल ते, गुर राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया, सब किल बिख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर भज सब किल बिख काट, हर हर उरतार्यो गुर पूरै, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ, मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कत काट, हर साजन मेलियो गुर पूरै, गुर बचन बिकानो हट हाट, मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावै, बहु कंचन दीजै कट काट, हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ भागा, लजपानी मटकी माट, कलयुग गुर पूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक

नैन दर्श पीखो निसपूर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरा चीत संत आग्या मन है मीत मेरा कमल बिकसै संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।

धार चरण संतन के मेरे हृदय मझार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बेमोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाई जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहिलेख पई ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

दिसा एही, बिन दर्शन कैसे रहो सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई।

पैर मनोवा जपत रहा तेरा नाम। लून हरामी नानक लाला बख्शे तुद वडियाई, आद जगाद दया पत दाता तुद विन मुक्त ना।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह के

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परी दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरी।

भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरे मुख बोले नारायण नर हरे।

सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमाणी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम सुमाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लागे हर हर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेखै अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छडाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन से

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै आत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति।

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ पये सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई।

सर्व गुण नायक तिसको कबहु ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी त्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

रावण भ्रम छूटा ज्यो प्रभ पए सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पी।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बिकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मनिया सुपाई।

मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खेड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस को तुरहु लिखिया।

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो

रहे सताना, ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना, हृदय भया गुमाना, सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो, उस मह क्रोध बिगाना, कुंगर बांध पए रामदा।

सब किश जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिय खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

माया रंग बरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिन सब राती वन त्रिण त्रि भवन पा।

ना छड है राज कमाए करी जिन थैली ता कै संग ना चंचल चलिया एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाप महतारी सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कै निकट न होई खलिया होए अवतूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रह मड़ी मसानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है।

सत कर्मानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी।

न उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको

गर्भदारन जिस भावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई पीटे संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकि किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल तिहानु अजियो मन ते अभिमानु निचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन तृप्त अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हार।

बिरख छाया जैसे बिन सत पवन झूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ए। मारू महला पंजवां।

चेत मन मह हर हर निदहना देह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीध मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

महाभौजन माहे तुलोहो जा को लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण।

राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाय। जो संपत अपनी करमानी छिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू न गाय। मारु महला नौ माई मैं मन को मान न त्यागियो। माया के मद जन्म सरायो।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां।

अठ सठ तीर्थ बहु कणा ब्रह्म था के भिखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

जल मथ तत लोड़ अंध ज्ञाना गुरमती दद मती है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत ना जाननी पशु माहे समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जमै वारो वार गुर कै शब्दे जे मर फिर मरे ना दूजी वार गुरमती जग जीवन मन वस्त सब कुल उदाहरण हार।

या समुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावना।

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै।

दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

लाले गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लाले खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

मनहु विसारिया नित देवै चढ़ै सुवाया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां किरपा करे ता सेवी सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचो आप गवाए बंधन तूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए।

चलना मुखे अमृत नाम मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिया एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी।

थीयै पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत।

कर हेरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटै दुर्मत कुमन घेरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई छिंथा चोली माया तारी घर घर मांगै जग प्रबुद्ध मन

तिस धावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना किरत न मिटई हुक्म न बूजै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया शिव शक्ति घर वास धरी।

आवै एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कतंब स्यों प्रीत करे खावै भोगै सुन सुन देखै पहर दिखावै काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाणै बिन हर नाम ना काल करे जेता मोह हमै कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावै मुख धूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बरू दो नैनोह नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावै रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख ना मितई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पए रस भोगण फोकर।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाण, गुर कै शब्द बिचारी जियो, संजोगी तन पिर मेला होवै।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लाख चौरासी प्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यों उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनुग्रह राख लीनो भयो साधु संग हर नाम

जिन यो पायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखे संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस।

रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हों बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने,

भो मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मान, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

जो मन तन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखानिया।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बख।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है।

बहराई हे जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई परपुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई हे क्या सलाही अगम अपार है।

जले पड़कारी, मनमुख तके कुंडा चारी, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई हे, काम क्रोध अहंकार निवारी, तस्कर पंच शब्द संघारी, ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै, मनसा मन है समाई हे, माँ की रकत पिता बिद धारा, मूरत सूरत

क्या जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर,

खेल तमाशा तुंडू कारी, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यो निस सुपने पखलाई है, तिनको तख्त मिली बड़ियाई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी, त्रे पवन ताड़ी लाई है, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है, गणत गणिय सहसा जिये, क्यों सुख पावे दुए तिये, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है, जुग जुग विरली

जाती। हर प्रभ संगी पहु ना परांति, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है। रख रख पैर तरे पहु तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख दे तू है मन भाव है।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरनी।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवें चलावे है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी,

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है। देंदे तोहट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझ साच नारी जह दूजे परम पलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

अर्प मिलै जग जीवन हर सिओ बणत बनाई हे। प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती।

जावै बूझै हुक्म सो साच समावै नानक साच मिलै मन पावै गुरमुख कार कमाई है मारू महला पहला आपे करता पुरख बिधाता जिन आपे आप उपाय पछाता।

आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप निजै त्याई हे। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमै, दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई, हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो, यो तरिय पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज है मन मुक्ताई हे। गुर पह मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई हे। गुर बिन उर्ज मरह बेकारा।

कहो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है ओह निर्मल है ना ही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह अं

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द कर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंज है पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हम मैं गर्भ निवारा ही, गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बिना ही गुर सरवर हम हंस प्यारे।

नाही। हर अगम अगाह अगाध निराला, हर अंत न पाइए गुरु गोपाला। सतगुर मत तारे तार नहारा, मेल लए रंग लीना। सतगुर बाज हो

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की चैतै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यो पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

कर लै चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छाई। हो मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिल हो चीन हो बेदसाई, जित प्रभ पाव हो गणत ना काई। हो मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

मूड कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जप

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराल्ला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराल्ला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

ताही साकत फांसी पड़े अकेला जामवास किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सत

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिर जनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जाको अलख लखाए आपे अकथ कथा बुद्ध ताहाए जन्मे को वाजह वाधाए सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाए संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

राम नाम कटयंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े वडेरे नानक साच मिले पत राखो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एकंकार वसै मन भावै

जाने जो किछ करे सो आपन पाणे लख 84 जी अपाए पाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाए रोवे नाम।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिले सो साची पहाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना

अलंकुम सबाया खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे गुप्त हो प्रगटी आएंदा ताका अंत न जाने कोई पूरे गुरते सूझी हुई नानक साच रते।

आया हुक्म समाया हुक्मे दीसै जगते उपाया हुक्मे सुर्ग मच पै आला हुक्मे कला रहाईंदा हुक्मे धरती तौल सिर पारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाईंदा हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदाफन।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रिपौन सारी, सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरते आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई, त्रिपौन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी, उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बण,

दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा, शिष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मतवाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा। इस मन माया को नेहो कनेरा,

संचोरी जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरानम राजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

जन राया दुख पै भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट घट रब रहे बनवारी।

कुल निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के पाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यगन निवार समाई मन मुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर अलख लखाया गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किसकी कीजै जिन्हो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगा।

निभलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनपहु पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ पंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेव हो सतगुर समुंद अथाहा, पाव हो नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाव हो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै,

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिभ लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुर ते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

न किशु न सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटंब मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते नंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझे है,

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन पया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई ही दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है अवगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे। ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया। हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे। काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै ना हम गुण ना सेवा सादी।

विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजहि वेद पढ़ हर नाम ना बूझहि माया कारण पढ़ पढ़ लूझहि अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर त्रीजहि वेद बाद सब आख बखाण है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथै मोह न माया सद ही साच वस्या काटे।

मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सचो सेव है सच त्याव है, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अन दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, सीजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे भाणे आप मलाए, सतगुर राखे सीजन उबरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी है, हम मैं मेरा दूजा पाया, किशना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखह रहना गुरमुख एको जाता ही जात पाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

सब दुख सुबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई सदा सद,

तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरतै सब अंतर गुर कै शब्द पछाता ही हर के भगत परे भंडारा आपे बख्शे शब्द विचारा जो तुद भावै सोई करसह सच्चे स्यों मन राता ही आपे हीरा रतन अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब सरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाता ही जिसनो नदर होवै तुर तेरी मरे न जम्मै चूकै फेरी साचे गुण गावै दिन राती जुग जुग को जाता ही माया मोहे सब जगत उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया जो तुद भाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाता ही पाप पुन वरतै संसारा हरख सोग सब दुख है पारा गुरमुख होवै सो सुख पाई।

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगमय गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगमय अथाहा आपे सच्चा सच वरताई।

लाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सिरत अपाई, बिरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारू महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते मनमुख का क्या विसाहाई से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार ना जान है पै बिन क्यों निरपहो सच पाई है जम काड लएगा साहाई अफरियो जम मारिया न जाई गुर कै शब्दे नेड़ ना आई शब्द सुने ता दूर हो भागे मत मारे हर जियो वे परवाहाई हर जियो की है सब सिरकारा एहो जम क्या करे बेचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा साहाई गुरमुख साचै किया अकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चै सुख ताहाई गुरमुख जाता कर्म विधाता जुग चारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मै गुरमुख गुरमुख शब्द समाहाई गुरमुख नाम शब्द सलाही अगम अगोचर वे परवाही एक नाम जुग चार उधारी शब्दे नाम वसाहाई गुरमुख शांत सदा सुख पाई गुरमुख हृदय नाम वसाई गुरमुख होए सो नाम बूझे काटे दुर्मत फाहाई गुरमुख उपजै साच समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लेंदे लाहाई गुरमुख भगत सो

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई, हर गुण गावह सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाहाई, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक जन नाम सलाहे बिदसै, सो नाम बेपरवाहाए, मारू महला तीजा, हर जियो सेवे हो अगम अपारा, तिसदा अंत न पाइए पारा वारा, गुर प्रसाद रविया काटे अंतर, पित

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

मरा पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाई आप पछाणै सो सब गुण जाने गुर कै शब्द हर नाम बखाणै आनंद दिन नाम रत्ता दिन।

तींजे कर्म कमाए, गुर कृपा ते घाटे अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहाए, से जन मिले तुरे आप मलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाए, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याएन, गुरमत सील सनाहाए, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसया काटे अंतर, छोड़िया माया का लाहाए, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याएन सदा सुख पाएन, निश्चल राजत नाहाए, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले वडियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द ना कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े अड़ बाद बखान है, काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर तावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

हर पाया, हर जप जाप समाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार

ते बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

अंतर परम गया पौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोला एंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा।

मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाईंदा कर्म होवै गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाई आपे करे कराए करता ज्यों पावै तिवें चलाईंदा सिमरत सा

अपाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेक करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे स्यों चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह एक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चो होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

गणत चुकाए सच सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा

गुर कै पाणे चलै दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वासना हुई काम क्रोध जलै सब कोई।

हट नाली सतगुर दिखाए अंतर नाली नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिए दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सच्चो

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा। तिन सुख पाया जो तुद पाई,

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर ना आवे।

पाई, सच्चे सच मलाईंदा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाईंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाया, निज करवासा पाईंदा, सब

गुरु कै शब्द हर मन वसाई, गुर किरपा ते नाम वसिया घट अंतर, नामो नाम त्याईंदा, नावैनु लोचै जेती सब आई, नाउ तिना मिलै तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाउ पाया से बड़ भागी, गुर कै शब्द मल

अनदिन हर सेव्यो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे।

गुर शब्द निवारी हर जियो हृदय रखो उर तारी गुर कै शब्द सदा सलाई मिल साची सुख पाईंदा सो चेते जिसे आप चिताई गुर कै शब्द वसै मन आई आपे वेखै आपे बूजै आपै आप समाईंदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे आप पछाणे सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाईंदा ए काया पवित है शरीर

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाली।

आई इतरंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाईंदा सच्चा महल सच्चे पंडारा।

आपे मेल मलाए आपी शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाई बहु संकट जोनी परमाई जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी।

अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया ज्योति ज्योत मलाया पंच दूत चितवह वेकारा माया मोह काय हो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवै पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबै वारू वारा सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया।

माही समाया करे अंदर को घर पाई गुर कै शब्द सहज सुपाई उथे सोग वजोग ना व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुख।

रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिनकी फिर गत हुए, जे गुरमुख रह सरनाई। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची। हो दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर सरनाई। अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरणी चित लाई। जिस भावै तिसे

ज्ञान रतन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख बखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिने एक पछाता।

तिन सुख पाया, सहजी ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखे, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर कै शब्द परम भव भागे। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह विच पानी हे।

समझै तै करते हर अनदेन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे मान करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे जिनका पख करह तू स्वामी इनकी ऊपर गल तुद आणी हे। हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेवया तिन सुख पाया बिन सेवा पछो ताणी हे। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाए तरी दिन धरना गगन रहाया हुक्मे चरना अगन उपाए ईंधन मैं बांदी सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संबाहे करण कारण समरथ अपाहे खिन मह थाप यथापन हारा सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया सदा सदा जपिया सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब नवाज करे प्रभ मीरे गर्भ निवारण सर्ब सुधारन किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता मात पिता सुत बंद पाई जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना साध संगत निश्चौ है तरना मन बच कर्म अरादी करता तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया जन्म मरण की जोन ना पविया दुख बनास किया सुख डेरा जा तृप्त रहे आगाई हे।

कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग धन ताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई हर का जाप जप हो जप जपने जीत आव हो वस हो घर अपने लख चौरासी नरक ना देखो रसक रसक गुण गाई हे खंड ब्रह्मांड उधार नहारा ऊच अथाह अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जन तिसह त्याई हे बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा की।

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईसै तिस बिन दूजा अवरना दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीव है जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पए इकतरा करते भोग बलासा है जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है शिंगार रखै संगानै मिल एकत्र वसह दिन राती प्रियो दे तन है दलासा है धन मांगै प्रियो बहु बिद धावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच ना साकै धन रहती पू

ऐसा वणिज करहु ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सतसंगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाई फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखे पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुख दाता विछड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहयो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौं रेण तेरे जो दासाई मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसे आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाहि सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरे हम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा किन मह थापयो थापन हारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहि जिस देह दर्श सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया अबनासी।

कटै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि। बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आप प्रवतिया आप उपाय रच्योन पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावे मीता। सत पुरख सत गुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेट है गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाईए हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जान है तुष मात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवे हृदय वसै ता ठंडा थीवे। गुरमुखों अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहल लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान दिवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलहे महला पंजवां।

चंद सूर्य गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना सिमरह खंड दीप सब लोआ सिमरह पाताल पुरिया सच सोआ सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वर्णा सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना करण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लावो जन्म पदार्थ सोजिना जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी परमुरुना गुर का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भाग सूख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन बूठा सो पूर करमा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवरमा कहिए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रव तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथ ताके पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

सत्संगा पीत पितंबर त्रिपवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग तर भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा निःकंटक निः केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिलै जिसे आप मलाई आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नव तन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संपन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भावे है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा मार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले मह मौला तस्बी याद करहो दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानो सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वो मैलाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरन आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका तिसह प्राप्त हो।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोहर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नान

चरण कमल हृदय नित तहारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सुवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग भाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना, जियो प्राण तन तन जिन साज

जाई जत कत ओही समावना सोई भगत सोई वडदाता सोई पूर्ण पुरख बधाता बाल सहाय सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बध कट है ना कटाए सोई होए जे करते पावे कह कह आप मनावना अंध कूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे करे अपने मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवे है सलोक महला तीजा। कागों हुए न उजला लोहे नाव ना पार। किरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटे सोई। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नदर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। इन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आत। कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो तन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नव निद नाम। एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम। इकनी सुन कै मन्या हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। हिक पद रहीद अत डापन दुख कणो तीने थाम परीद। महला पहला मांडल भेद से बाजणो कणो तड़िए जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग मह नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाजह बिक संग्रह बिक स्यों तरह प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोय खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्याजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ अमृत का रस आया
मन वसिया नाहू सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पौ गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहं हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरते सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवा माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलई क्या लपटाव है अंध गुर के चरण त्याए तू टूटे है माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक किस शरणागति जिन जगते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे है ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस चार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विसथारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जंत उपाए अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदयाप गुरमुख निसतारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो मिहिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू ना एक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगै त्रिण जिस होवै आप दयाल तिस लावै है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वशाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवै आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बीना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता
ज्यो आप चलावे है त्यो चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवां पोरे पोरे रूहड़े सिवेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखणे महला पंजवां गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवां नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवां नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवे कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगे सकति हारिया केवे हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लखमी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवां देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवां दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवां कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या
तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सबना का मित है, सब जान है आपे, ऐसी शोभा जने की जे वडहर प्रतापे, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रव्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

या उबरे पाग मथाए महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानी है तै सखी भाग मथाए जिनी मेरा सजन रावया पौड़ी हों ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावे प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यो क्यों मन रूसी जिस है हमारी किंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तने अत गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी।

मार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्तियो सतवंता साड़ा जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाए रहो हर वस दा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू तां हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिंजा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खा कुलणेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए हयाओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला।

मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया। मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया। मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्पे हो हम मैं तज हो इत पंत जलाइया। नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया। सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया। तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया। दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह। पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा।

तरोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कित ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी तार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिसकी का

शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दिसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वर हो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाषाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगाधा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखने महला पंजवा जोड़ बंदे आप सोत राय किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां पिरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह पुत्र कलत्र स्नेह नानक नाम विहूणिया निमुण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याईंदा दिन रहन जपंथा मैं छड्या सगल अपायणु प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्लै नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक दखने महला पंजवा लगणिया पिरियन पेखंदियां ना तिपियां हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा कथनियां संतहां ते सुखाऊ पंदियां नानक लदणिया तिन्हा जिन्ना भाग मथाहड़ै महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतियां पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं करदा यालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपियोन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक दखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ै ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अतकालियां बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदियां महला पंजवा जल फल नीर भरे शीतल पवन चलार दे सीजनियां सोएन
हीरे लाल जड़ंदियां सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणिया पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लब्बई जे फिर है सब धरना गुर मिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए त्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस भौजल तरना श्लोक महला पंजवां पहला मरण कबूल।

जिन्ना महबत एक सिंह ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहण ना जाइए सच साहा अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले पन्नण करन समरत है ओपत सब परले करन कारण समरत है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब से क्या मानस डोले गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोले सोई कम कमावना किया तुर मोले तुदहो बार किश नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बुड हो गे परवार सकल सिंह राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बद हो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर रामै राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनो ना तजह बेकार जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद्ध जा को खुश।

खुन जीव हो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिव सोई, जो तुम मोह को दूर करत हो, तौ तुम मुक्त बताव हो, एक अनेक होए रहयो सगल में, अब कैसे परमाव हो, राम मोह को तार कहां ले जई है, सुदो मुक्त कहां देओ कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तबे लग कही है, जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल पई घट ही मह, कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे कीजत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे, तह हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसह पंच किरसाना, नैनू नक्टू सर्वनू रसपत, इंद्री कहया ना माना, बाबा अब ना बसो एह गाँव, करी करी का लेखा मांगे, कायत के तू नाव रहाओ, तर्मराए जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी, पंच किरसानवा भाग गए, लह बांधे हो जी हो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संत हो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को।

प्रसाद अनभव किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बना हम्बै सहो हदूर देखै ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बना हम्बै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

लंबै। कहो कबीर एक बेनती बराजियड़े, मोको भौजल पार उतारवणा हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ, हस्ती देख भरम ते भूला। श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो। अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया। गुण गावत रहन बेहानी, कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी। जात ना काहू की मानी, श्लोक कबीर। गगन दमामा बाजियो, परियो निशान कहाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचान।

नरसिंह रूप होए देह धरयो नामा कहै भगत बस केशव अजहूं बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बसारे उरे दीवाने दीन बसारे उरे पेट भरयो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारयो रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी रचयो तंदे झूठ स्वान सूकर बायस जिवै भटकत चालयो ऊठ आपस को दीर्घ कर जानै औरन को लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात कामी क्रोधी चातुरी

नहीं, मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि विखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से

आस जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माता।

करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तनोचन सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तीन बस जा कीरी। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नवनिध कर तल ताके। हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाउ। नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही। व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम सर नाही। सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

खोई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपे पेयड़े घर शब्द पतीनी सहुरड़े पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़े भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुत्ती हों मैं लगी ताती उडर हंस चलिया फुरमाया असमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज घर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी नानक आपे आप पछाणे गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारी शब्दे रव रहा गुरु रूप मरारी गुरु रूप मरारी त्रि भवन धारी ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाई नित देवै चढ़ै सुवाया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुणै समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साचै राता

निराला राम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम।

गुण गाए राम रसाए रसिय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी संत महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीविए राम जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीविए राम क्यों अमृत पीविए हर बिन जीविए तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुर गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिक भवजन तारिय राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए,

एक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग है सत गुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाए काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावह जगदीश ते जान पाओ बिखम तरा बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना हमरे

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु ओट गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाउ थे हो गुवाया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

रमहु रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

साध संग मन लाभ हो, ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुर बचनी, अपना दर्श दिखाव हो, सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजाव हो, अपनी भगत देह दयाला, वड भागी नानक हर पाव हो, किदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकारथ जात, ताज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ, धन जोबन संपै सुख भोगवै, संग ना

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत।

काल अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेले मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दूरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुस भागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावै दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावै ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरध बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

या निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपह रतन जवाहर मानक।

खान पाऊ भगत सिंह काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाव लालच झूठ बिकार महामद एह बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लै जाए रहाव देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर न देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमरहो जन्म अकारथ जाए राग के दारा बाणी रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल सु

मन जोगी मन बिनस बेयोगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पये बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरो महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी रहाओ, ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरो महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै, आप मार अप

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाउ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारी वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोए जागत रहे ना मूसे कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत

जाको राखै अपनी सरनाई, साची लागै साचा फल पाई। रे जन कै स्यो करहु पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा। रहाउ एहो आकार तेरा है तारा, खिन मैं बिनसै करत न लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरू महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार, रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसै सहज सुपाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखणहार, नानक नाम रखो उर धार। भैरू महला तीजा, कल युग मह राम नाम उर धार, बिन नावै माथै पावै शार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई, रहाउ राम नाम जन पालह सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का पाणा मनह से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान, सो सेव हो जो कल रहया तार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरू महला तीजा, कल युग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार, रहाउ तन मन खोज करै मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेहो लोए, कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई। भैरू महला तीजा, कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई, मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हऊ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग ना जाई रहाउ, सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई,

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरतै है तिन निज कर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। भैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरू महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरू महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले।

नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सुरलिया माण। जो किस कह सो भला कर मान, नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा, मनसा मन है समाये लै। गुर शब्दी विचार, गुर पूरे ते सो जी पवे। फिर मरे ना वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पजामन हार रहाऊ। सब मह इको रव रहिया, गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ, अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है, होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेविया दाता, से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख ना लागे ताई। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाई। भैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जमे सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राखिया पुरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाई, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर स्यों कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै,

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौण रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत हो।

साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरव महला पंजवा सतगुर सेव सर्ब फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए पतत पावन प्रभ तेरो नाओ पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ रहाओ साधु संग होवे उधार शोभा पावे प्रभ कै द्वार सर्ब कल्याण चरण प्रभ सेवा धूर बांछ सब सुर नर देवा नानक पाया नाम निदान हर जप जप उदरिया सगल जहान भैरू महला पंजवा अपने दास कहो कंठ लगावे निंदक कहो अगन मह पावे पापी ते राखे नारायण पापी की गत कत हूं नाही पापी पचिया आप कमाए रहाउ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरध प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहया समाई नानक दास हर की सरनाई राग भैरो महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा कमन बिख्या रस माता रे मन मेरे तू गोविंद भाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदह नगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाई दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे पूल रिन्याने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, द्वितीया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई, पहरू महला पंजवा।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरै कैसे राज मंडत बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दिष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रती ना पावे बिन सतगुर रोग कतह ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोगों काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया भैरों महला पंजवां चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा।

अंत अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

रहत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊने सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जा

माया। काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प नुआ ज्यों जल बिन मीना। जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया। पैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए। हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार। गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ। जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान। सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगै मिले न थावे थाओ। जुगह जगंतर एहो तत् सार, हर सिमरन साचा विचार। जिस लड़ लाए लए सो लागै, जन्म जन्म का सोया।

की आस्था, दुख सुख हमरा तिसे ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार।

अणहुंडा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजै पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारे वेद अरनाद

मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। भैरों महला पंजवा, निर्धन को तुम देव हो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना।

नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवां संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत मंडल

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवां सुख नाही बहुत धन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वड भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुरे अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवां गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कमल बिगास गुण गावत निश्चल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दलाभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी पैर

आवण जान रहे हर त्याई, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण कराव नहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवां, गुर सो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यों लागो हेत, खिन मह बिन स्यों महा परेत, आठ पहर हर हर

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सार संभाले साचा सोई, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, किसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारिथ, प्रभु हमारा सा

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती होए पनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतह वड भागी नानक तिनकै सद कुर्बान। पैरों महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखै मिथ्या रसना नित उठ पाखै। चक्र बनाए करै पाखंड चुर चुर पचै जैसे त्रय रंड। हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाईए। साची दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने। लीपे थाए ना सोच हर मानै।

तिस जान नहीं भंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे निंदक को

जियो पिंड तन तिसकी रास, सोई मेरा स्वामी करनै हार, कोट बार जाई बलिहार, साधु तूर पनीत करी, मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाऊ, जाके ग्रह में सगल निदान, जाकी सेवा पाई है मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव

कै मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को

अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दायाया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाव। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे

आया भगता मन आनंद बजी वधाई अपने सेवक कौ दे वडियाई जम्मन मरना मोह उपाया आवन जाना करतै लिख पाया।

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी पौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागाए आए। सतगुर नाम निधान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए, हर के नाम बिन दरगाह मिले सजाए। कह नानक सब को करे कराया, से परवान जिन्नी हर स्यों चित लाया।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है सुमाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती नाराई हम मूड मुगद किश बूझ नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावै सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए।

नानक तिनकै सद बलिहारै राम नाम उर धारे भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

बे परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा। नाम बिना मन मुख गवारा, जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन। जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साह। नाम हीन नाही पत वे साह, जिस नाम हृदय सो सब मह जाता। जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। नाम बिना भ्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा। जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान। नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल। साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया। कहो नानक तत्तै तत् मलाया, भैरू महला पंजवां। कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल। कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवर ना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो ओपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जा।

बहर किस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना, जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा, रहाउ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन

जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई।

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हूं कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

महराती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया महराता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

पार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सतर साय सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर।

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरै, इंदर कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

भगत जना को देहरा फिरे, भैरो नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसे।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कहे करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन धरे। रहाव बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला तै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल तै कूपियो, मुहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन धनी, थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नखह बिदारे, हो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्याव। राम अपै।

आए ना तर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसे क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोई मेरा किया कछु ना होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह। सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन तनी। पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कह ता धरन अकोडी करूं कह ता लेकर ऊपर धरूं।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फुरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किश पतिया।

होई, पारस परसै दुबदा ना होई, रहाओ सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक समाई, मन का सुभाव सब कोई करे, करता हुए सोअन पै रह, फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बुलाई, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास, कृत कारण दद मतै सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण, कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग।

संत पर फड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुती आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रवह से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाउ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो दे।

काजी मुल्ला हो वह सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ी अस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर हो वग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार क्या कमावै जोग।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कै रमैया नेड़ नाहि जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होए, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख

पहाओ जन नानक हर गोर गुर मलाओ बसंत महला पहला मेरी सखी सहेली सुनो पाए मेरा फिर रिसालू संग साए ओहो अलख ना लखिया कहो काए गुर संग दिखायो राम राय मिल सखी सहेली हर गुण बनी हर प्रभ संग खेलह वर कामन गुरमुख खोजत मन मने रहाओ मन मुखी दुआगण नाही भेओ ओहो घट घट रावै सर्ब परेओ गुरमुख थिर कीना संग देओ गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेओ बिन गुर भगत ना पाओ होए बिन गुर संत ना संग दे बिन गुर अंदले धंद रोए मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए गुर मन मारेउ कर संयोग हैन सरावे भगत जोग गुर संत सभा दुख मिटै रोग जन नानक हर वर सहज जोग बसंत महला पहला आपे कुदरत करे साज सच आप नबेड़े राज राज गुरमते उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगमे अगोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाओ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाई हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुरसिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

गोड हो धरती पाई, ज्यों गोड हो त्यों तुम सुख पावहु। किरतना मेते आ जाई, बगले ते फुन हंसला हुए। जे तू करह दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा। दया करहु दयाला, बसंत महला पहला। खिंडोल सहरड़ी वत सब किस सांझी, पेव कड़ै धन वखे। आप कचजी दोष ना देऊ, जाना नाही रखे। मेरे साहिबा हौ आपे परम पलानी, अखर लिखे से ही गावा। अवर ना जाना बाणी रहाउ, कड कसीदा पहरह चोली। ता तुम जाड़ हो नारी, जे कर राख है बुरा ना चाख है। हो वह कंत प्यारी, जे तू पढ़या पंडित बीना। दोए अखर दोए नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए। जे कर सच समावा, बसंत हंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची।

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब

सेव परम सुख पावह आत्मदेव रहाउ कर्म होवै ता सेवा करै गुर प्रसादी जीवत मरै अन दिन साच नाम उच्चरै इन विद प्राणी दुत्तर तरै।

संसार बिरख को दोए फल लाई, आपे करता करे कराई, जो तिस पावै तिसै खुआई, नानक जिसनो नदर करे, अमृत नाम आपे दे, विख्या की बासना मन है करे, अपना पाणा आप करे, बसंत महला तीजा, राते साच हर नाम निहाला, दया करो प्रभ दीन दयाला, तिस बिन अवर नहीं मैं कोई, ज्यों

भी लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरु।

पाए तौ जग जीवन वसै मन आए भगत करे सद वेखै हजूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर इस भगती का कोई जाने पियो सब मेरा प्रभ आत्म देव आपे सतगुर मेल मलाए जग जीवन स्यो आप चित लाए मन तन हरिया सहज सुपाए नानक नाम रहे लिव लाए बसंत महला तीजा भगत वच्छल हर वसै मन आए गुर कृपा ते सहज सुपाए भगत करे विचों आप खोए तद ही साच मलावा होए भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार गुर कै हित साचै प्रेम प्यार रहाऊ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर शब्दी विच

मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाऊ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बन राय गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिया शब्द कमाई।

नाम रता जन प्रगट हुए। एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचे पाए। साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर। एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए। जिन साच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया। बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर। संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई। पूरे सतगुर

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए, होर

बहु अभमान अपनी पत खोए। सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा। नाम नव निध पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए। आप करे किस करण ना जाए।

संत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाउ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाय।

नानक शांत होवै मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम मनशे। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे। गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपसे, जन्म जन्म के किल विकमल भरिया। मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाओ, तुमरा जन जात अव जाता। हर जप्यो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर। हर सोभा हर प्रभ दिन से, जात अजात कोई प्रभ ते आवे। सब पूरे मानस तिन से धन वड्डे वड पूरे हर जन। जिन हर धारियो हर उरसे, हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी। हर धार कृपा प्रभ मिलसे, जन नानक गुर पाया हर तूठे। हम किए पतत पवीसे, बसंत हंडोल महला चौथा। मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे। ज्यो बारक रसक परयो थन माता, थन काढे बिलल बलीदे। गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाऊ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हमै मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म न बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनीदे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे। तिल घर नहीं वासा पाईऐ, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईऐ, गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ। हो मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईऐ रहाओ। घर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमया लह ना सकाईऐ। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यो सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मधुसूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया।

काम इस सद बसंत जिस हृदय नाम ग्रह ता के बसंत गनी जा कै कीर्तन हर धुनी रहाउ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाइए पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निरभउ।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाऊ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाऊ जाको खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जाके भगत आनंद मै जाके भगत को नाही खै जाके

ज्यो हरे बूट साध संगत त्यों हो मैं छूट जैसी दासे तीर मीर कैसे उदाहरण गुर है पीर तुम दाते प्रभ देन हार निमक निमक तिस नमस्कार रहाऊ जिसह परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पए मुकत भगत आराध है।

ताद मन अगाना हर रसै स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान।

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान।

मन प्रभु आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताय, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए, बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर चेते आवै, बिन सतगुर दीसै बिल लांती, साकत फिर आवै जावै, रहाओ से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल मही अल रव रहिया, गुर मिल नानक हर हर कहिया, अष्ट सिद्ध नव निध एह, कर्म परापत जिस नाम दे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा, घर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी वछुनिया, तुम रवहु गोबिंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाउ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, अन दिन उपजी सहज धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित रातो हर नाम रंग, रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होआ साध तूर, नित देखै स्वामी हजूर, काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई।

कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

एक फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन बिद पा

तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाउ। एहो जग तुएं का पहार, तै साचा मानिया केहे विचार। तन दारा संपत गृहे, कस संग न चालै समझ ले। एक भगत नारायण होए संग, कहो ना।

संग तेरे हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देख जान है आप आप भलाए किस कहो जाए गुरमेले बिरथा कहो माए अवगुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले है मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कदै धोए सदा मुक्त बांध ना सकै कोई सदा नाम वखाणै और ना कोई मन

गया तीता, हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दी या सच अमृत।

पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मन मुख अंदले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख 84 जनते अपाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करता।

0: परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पति जय करण हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पवरा फूल बेल आपे संगत मीत मेल ऐसी

आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर कर देख है करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी।

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखायाई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहेंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हुआ रसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करह बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गण का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत सात शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तो नह संगाई बिख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

दारल दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाउ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं नकाज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज रहाउ। सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे,

अगन के लूठे, अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी परोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बेचारा, रामानंद जी।

ना चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

तो जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

कांड है, कैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली ला।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझ है सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भ

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भए गुरु आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरु आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया ओए पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलिया सुख।

हर हर पानी पंच जना गुरु वसगत आनी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल।

इन सत संग सुख किनै ना पाया, जाए पूछो बेद बीचार। राणा राव सबै को चालै, झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बड़ीरे तुम हो। तिन स्यो झगरत पाप रहाओ, जिस धन का तुम गर्भ करत हो। सो धन किसै ना आप, खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस। तौ लागै पछताप, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी। हर तिन के जापो जाप, अपदेश करत नानक जन तुमको। जो सुनो तौ जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा, दो पदी पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन जगन्नाथ जगदीशरु। जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक, सब दिन सब रात रहाउ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक। तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत, तू हर बेअंत, तू हर स्वामी। तू आपे ही जान है अपनी पांत। हर कै निकट निकट, हर निकट ही बसते। ते हर के जन साधु हर पगात।

कृपा भई जगदीश्वर कृपा भई मैं अन दिनो साध साध सदा हर जपया हर नाम सारंग महला चौथा जप मन निरभउ सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो

सब सृष्ट का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाऊ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यो चात्रक जल पिए त्रिपतासी सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राखै विच कल युग अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर

मित नहीं पाईऐ सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ। सार महला पंजवा हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते

रह सब वर्ता जो सफरी दम्फान प्रभु पुलाए पूजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान सारंग।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कह ताई मोहन ठगौरी स्यों उलझ पाहा काच बादरै लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यों तस्कर दरसानेहा आन अपाओ न को सूजै हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे बिन पिर सबै बिख लाग्यो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय देसांग्यो हियो देओ सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना मोल दासरु देओ साध संगत अरदाग्यो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खाग्यो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सार महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खतह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाऊ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिती सिती सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटै नाही अभिमानै नीर बलोवै अत श्रम पावै नैनु कैसे रिसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परा।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाऊ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाऊ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रिनाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नस है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

यह अधावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महल्ला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याई रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाव मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाऊ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरे जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्बांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्ह शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग न संगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे।

पार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप मह दीपक बलेओ गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर मैं पाया सारंग महला पंजवा मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा खुल्यो कर्म भयो परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्व थान घट बीठा भयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरै बसेओ सगल

और दुतिया आस बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

फूल फूल बेख खाई रहाओ, प्रव सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई, मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई, सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवा, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाऊ, हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमक नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह घर, तिस ही सरणी पाइए। किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताइए। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट न लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे, अमृत नाम औखद मुख दीनो, जाए पया गुर पैरे। कवन उपमा कहो एक मुख, निर्गुण के दा तेरे, काट सिल्क जाओ अपना कीनो, नानक सुख कनेरे। सारी महला पंजवा, प्रभ सिमरत दुख बनासी, पयो कृपाल जी सुखदाता, होई सगल खलासी रहाओ। अवर न को सूजै प्रभ बिन, कहो को किस पह जासी, ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किश तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अबनासी। कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की फासी। सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझ सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जान है त्यों पारे रहाओ, जब भूखो तब भोजन मांगे, अगाए सुख सघारे, तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवारे। कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हारे, नाम न बिसरे तब जीवन पाइए, बिनती नानक एह सारे। सारंग महला पंजवा, मन ते पै पहो दूर परायो, लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाओ। गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहु तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वचल ग्रह पायो। नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो, करना आप करावन आपे, कहो नानक आप आपायो। सार महला पंजवा, अमृत नाम मनह आधारो, जिन दिया तिस कह कुर्बाने, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ। बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारू, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन रंकारू। एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंदू कारू, आदमा बेअंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारू। सारंग महला पंजवा, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्ब सुख ताहू कै पूरन, जां कै सुख है हरी रहाओ। मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना, वड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारे, कहो नानक ते पवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारे। सारंग महला पंजवा, रसना जपती तू ही तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू।

का किन्हीं बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाव देव सचार के दिसह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंज।

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

चार मोहल्ला पंजवां ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया रहा।

ऊचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा, एक रहे बिस्माद, सारंग महला पंजवा।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लहो हर हृदय अराध हो छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरी देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पहानी। सारंग महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मूल ते मनुख करिया एहो पर

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा, सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड़ भागी। एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया, कर कृपा जो अपना कीनो ताकी उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ ना रही रहाओ, हो कृपाल नाम दे हो अपना।

निर्मल बहुल जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू न थावे थाओ, सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ, सारन महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करहु भगवान, आवत जात दो पख पूरन, पाइए सुख विश्राम, सोदत सोदत तत बिचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी, सारी महला पंजवा, साचे सत गुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है, चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, निश्चल हर का नाऊ, भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाईए, सगल घटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो तां को, जा का अंत ना पार, सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई, संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई, जाको कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे, आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे, सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनिय हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन, फोर परम की रेखा रहाओ, कहत सुनत किश शांत ना उपजत, बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत, तां कै मुख लागे का लेखा, जा कै रास सर्व सुख स्वामी, आन ना मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा, सार महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दगद हो।

प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम नंदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवां हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार न लागे तां को ज्यो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन्यान न होरी सारंग महला पंजवां चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाव बिन हर भजन जेते काम करियह तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कमल ना

तिस सोए उद्म करूं दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए। दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत होए। सारू महला पंजवां जीवत राम के गुण गाए। करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुम।

तेरी सरलाई ज्यो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव। ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप, आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत ना होवत कुकरी आसा इत लागो बिठिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृथ दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महा बज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कस ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किन बिख करत करत पछतावह कबू ना साकह शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देवह मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत परती हार रहाउ सांत सूख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कश

रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीत्यो।

संसार जल थल महियल पूर रहेओ सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारी महला पंजवा ताते करन पलाह करे महाबिकार मोह मद मातो सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांचे उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखह कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कश नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप हरन नाव रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारंग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग रौ रहाव दृष्टो कस संग ना जाए।

नौ परीच नतकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ का को तन धन संपत का की का स्यों ने हो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरल संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद बिखिया रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा।

विषम भय गुण गाय मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा धुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावे सब कोई निरतन सतगुरु बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पई मन पहाई सहज समाद सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बने आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग पौ भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड़ भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर

निर्मल पद चीनिया हर रस रत्ते अदखाई एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी।

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम पुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावे लिखै सारंग महला पंजवा अष्टपदिया घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाओ राणा राओ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा बेशुमार वद साहा तारा ऊचे ही ते ऊचा पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे कट कट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुढ़ाई मुक्त भये साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भये कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बद साहिब कुदरत कौन बिचारा मन तन सीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जा का विस्थार शोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंद्र उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण
अपना किया जन है आप, आपे घट घट रहे हो बे आप, कृपा निदान नानक दयाल, जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब देखिए अनपह का दाता, कट कट पूर्ण है अलपाता, कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन, जल तरंग स्यो रचन किया, हब रस माने भोग कटाने, आन ना दिया कोथिया, हर रंगी एक रंगी ठाकुर, संत संग प्रभ जाता, नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना, सब देखिए अनपह का दाता, कौन उपमा देओ कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों न अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे, संग ना कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो।

सा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थानंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवरना कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाब वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

आख एक आख अख है शब्द पख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ कट कट थाप आखने औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

तीर्थ ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाई सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पवजल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देवे सोई श्लोक महला पहला पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भय विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्ने दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्ने हों मैं गई सब रोग गवाया नाए मन्ने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाए मन्ने शांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर शरीक होवै कोई तेरा तिस अगै तुदे आखां तुद अगै तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

बदे भार, इकना हुई साखती इकना हुई सार, लश्कर सने दमामिया छुट्टे बंक द्वार, नानक तेरी शार की पी फिर हुई शार। महला पहला, नानक तेरी तह पई मिट्टी संदा कोट, पीतर चोर बहालिया खोट वे जिया खोट पौड़ी, जिन्ना अंदर निंदा दुष्ट है नक वड्डे नक वढाया, महाक्रूप दुखिए सदा काले मुह माया, भलके उठ नित पर दर्ब हिरह हर नाम चुराया, हर जियो तिनकी संगत मत करहु रख लेहो हर राया, नानक पया किरत कमाम दे मन मुख दुख पाया। श्लोक महला चौथा, सब कोई है खसम का खसम हो सब को होए, हुक्म पछाण है खसम का ता सच पावे कोई, गुरमुख आप पछाणिए बुरा ना दिसै कोई, नानक गुरमुख नाम त्याई है सहला आया सोए। महला चौथा, सबना दाता आप है आपे मेलन हार, नानक शब्द मिले ना विछड़ है जिन्ना सेविया हर दातार, पौड़ी गुरमुख हिरदय शांत है नाउ उगव आया, जप तप तीर्थ संजम करे मेरे प्रभ पाया, हिरदा शुद्ध हर सेम दे सो है गुण गाया, मेरे हर जियो एवं भावदा गुरमुख तराया, नानक गुरमुख मेलियन हर दर सोहाया। श्लोक महला पहला, तनवंता इव ही कह अवरी धन कौ जाओ, नानक ने धन तित दिन जित दिन विसरै नाओ। महला पहला, सूरज चढ़ै वे जोग सब सह घटै यार जा, तन मन रत्ता भोग कोई हारै कूजणै, सब को भरिया फूक आखण कहण ना थम्मीऐ, नानक वेखै आप फूक कढ़ाए तह पवै पौड़ी, सत संगत नाम निदान है जिथों हर पाया, गुर प्रसादी घट चानना अनेर गवाया, लोहा पारस भेटी है कंचन होए आया, नानक सतगुर मिले है नाउ पाई है मिल नाम ते आया, जिन कै पोतै पुन है तिन्नी दर्शन पाया। श्लोक महला पहला, त्रिग तिन्ना का जीविया जे लिख लिख वे कहनाओ, खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़े क्या थाओ, सच्चै शर्मै बाहरे अग्गै लह ना दाद, अकल एह ना आखियै अकल गवाईऐ बाद, अकली साहिब सेवियै अकली पाईऐ मान, अकली पढ़कै बुझियै अकली की चैदान, नानक आखै राहु एहो होर गल्ला शैतान। महला दूजा, जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग नह होवै ऐसी कहिए सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिए मूरत। पौड़ी सतगुरे अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया, सतगुर कै भाण जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे ना सकई कट चानन बलिया, नानक बख्श मलायन फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौंका तिलक करनी होए, पाओ भोजन नानका बिरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करै काम क्रोध तृष्णा उच्चरै, दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जानै, द्वादशी पंच वसगत कर राखै तौ नानक मन मानै, ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भूपतरा जे रंग राए संच है बिख माया, कर कर हेत बधाए दे पर दर्भ चुराया, पुत्र कलत्र ना वसह है
बहु प्रीत लगाया, वेखदियां ही माया तुह गई, पछतह पछताया, जमदर बद्दे मारी है, नानक हर पाया। सलोक महला पहला, ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुला घरे मसीत, मखट्टू होए कै कन पड़ाए, फकर करे होर जात गुआए।

अल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याएं दे तिन टोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोइन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ है गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समवाय, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाय, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न विसरे झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावे है होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावे काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इह मन लहरी विच है हौ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमे पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिखमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वारु वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावे मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटी है नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारे है आवन जाना दुए पौड़ी, मंगत जन जाचे दान हर देहु सुपाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए, सतगुर नाल दिखालिया रव रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा,
मनमुख बोल न जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार, नानक किसनो आखी है सब वरतै आप सत्यार। महला तीजा, हर गुरमुख तिनी आराध्या, जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन को, जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी, आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया, नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया, वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया, जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया, नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए, दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए, जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए, जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए, जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए, अन दिन नाम त्याए ले नानक सच समाए। महला तीजा, सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए, नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी, आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया, गुरमुख भये निरास परम सुख पाया, विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया, उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया, नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लये मलाया। सलोक महला तीजा, पराई अमान क्यों रखी।

जाए ऊना परख न आवे अड न पल पाए जे आप परख न आवे ता पारखिया थाव लयो परखाए जे उस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल पाए धर हुंदे धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रव्या गुर पाया सगले दुख नवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे मन मुख तिन की बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे उना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लय मलाए महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए पंडित मोनी पर पड़ थके भेख थके तन धोए बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सवाया नानक बख्श मलायन हर नाम समाया सलोक महला तीजा माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार लोभ लहर सुध मत गई सच न लगै प्यार गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार महला चौथा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसै हमारी चिंद महला चौथा सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याए दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह उठा शहबर लाए सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए हर अचिंत बुलावै कृपा कर हर आपे पावै थाए हर तसै त्याव संत जन हो जो अंते लय छाए हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए जिन्ना गुरमुख नाम अरादया तिन्ना दुख भुख लह जाए जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया सलोक महला तीजा अमर वे परवाह है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुजत करनी जाए आप छोड़ सरनाए पवे मन लए रजाए
ਗੁਰਮੁਖ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, अत संचय समझे नहीं मूड, तन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ मेरी बांदी भगत छिडावै।

निफल भई सब सेवा बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी जेहे परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मेल कथा पनीत ना चाली छाड मन हर बेमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे

फिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिंह सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

सब शाम रात परमदै दिसह खाम देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा कृष्णा क्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निदान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

ब्रह्मा विष्णु महेशा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख।

तू हर हर दर शोभा पाए। मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अनदिन नाम लए मेरे मन हरे अमृत नाम ते आए सतगुरु पुरख।

सच सोई नानक नाम प्रभु ते पाईऐ जिनको धुर लिखिया होई मलार महला तीजा गण गंधर्व नामे सब उदरे गुर का शब्द विचार हमै मार सद मन वसाया हर राखिया उर तार जिसह बुझाए सोई बूझै जिसनो आपे लय मलाए अन दिन बाणी शब्दे गावै साच रह निवलाए मन मेरे खिन खिन नाम संभाल गुर की दात शब्द सुख अंतर सदा निभ है तेरे नाल रहाओ मनमुख।

अंतर वसिया अलाखिय पीवा गुरमुख हुए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपी दीवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा दो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर

गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम बखाने। सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगे शीस तरे सदा अलग रह निर्भ।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए फन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाव कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउमै ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेवह आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचे हैं धूर साधु की ताई, हर का संत मिल

अगमग गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम ते आवे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभ कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया।

खीर आधार बारिक जब होता बिन खीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नाव निद नाम निदान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहे मोहे हृदय बस है नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कार्य सगल आरंभियो का।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते, राग मलार।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवे।

मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहुत पयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन भय।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तो

सब रहियो सब अंतर सर्व रहिया पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाओ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दे

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

काल गुआया करता है आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गाव हो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाई है मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

अगुआई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोलै मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कनै।

आहूह गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तुनक ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी गिर तार जल तल पवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी साध संग रामैया रस पायु नानक जाकै भावनी नीकी मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारी रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी विषम विषमै विषम भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी मलार महला पंजवां बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग कन घोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रिय।

फिर भावै प्रेम सखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग दीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ, सरवर कमल किरण अकासी, बिगसै सहज सुपाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मलाई, चात्रक जल बिन प्रियो प्रियो टेरे, बिलप करे बिललाई, कनहर कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई, मीन नवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह न सकै पल जल बिन, मरन जीवन तिस ताई, तन वांदी फिर देश नवासी, सच्चे गुर पह शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी, भगत रत्ती हर खाई, प्रियो प्रियो करै सबै है जेती, गुर भावै प्रियो पाई, प्रियो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मलाई, सब मह जियो जियो है सोई, घट घट रहे आसमाई, गुर प्रसाद घर ही परगासिया, सहजे सहज समाई, अपना काज सुवारो आपे, सुख दाते गोसाई, गुर प्रसाद घर ही फिर पाया, तौ नानक तपत बुझाई, मलार मोहल्ला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच धर पाही, इस तन तन का कहो गर्भ कैसा, बिन सत बार ना

खंजन कागद कोट इहो जग है बपरू रंगन चेहन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरै खिनताई नदी उपकंठ जैसे घर तरवर सरपन घर कर मा

बचनी दिखिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहले।

गुर कै तकिया साचै तान, नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण, बूढ़ा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार, जित कर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै, करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै भै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै भाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, हिंद वरसै धरत सुहावी, घट घट जोत समाणी, कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे भाता कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए, चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं, सब मह शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं, जामन मरना दीसै सिर उभो, खुदया निंदरा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जाचै हृदय संभाल, रहाउ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्व जी की ए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत भारी, ऊड़ ना साकै पंख पसारी।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विन किन न पाया, मन वेखो हृदय विचार। वडभागी गुर पाया, भव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाई। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाई। मल्हार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे बीचार, बिन नावे जम डंड सह। मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर सिउं लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल प्रगास तित घट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन भीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेख हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

बिन मंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला। राणी कैलाश तथा मालदे की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर मिले है मन रहसी, जो उठे धर्म शिंगार। सब दिसे हरियावली, सर भरे सुभर ताल। अंदर रचे सच रंग, ज्यो मंजीठे लाल। कमल विकसे सच मन, गुर कै शब्द निहाल। मनमुख दूजी तरफ है, वेखो नदर निहाल। थाही पाथे मिर्ग ज्यो, सिर दिसे जमकाल। खुदया तृष्णा निंदा बुरी, काम क्रोध विकराल। इनी अखी नदर ना आवई, जिचर शब्द ना करे विचार। तुद भावै संतो।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया।

राम राजा आया, दैंता मारे ताए हुक्म सबाया, ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदै लाए

नानक चूर मरह दुहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सामने आया है सखी जल हर बर सनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कच्चिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख विण कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघ हक किश नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार मनमुखी अग्गै लेखा मंगी है बहुत ही होवे मार गुरमुख।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे ही वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा। कलमल होई मेरा।

जो हर चरणी रहे लिव लाए, ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बणाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाई, तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना हो वई।

आई। नानक जिन को नदर करे ता एहो तन पल्ले पाई पौड़ी। आप कराए करे आप हम कैसे हो करी पुकार। आपे लेखा मंगसी आप कराए कार। जो तिस पावे सो थी हुक्म करे गावार। आप छड़ाए छुट्टी आपे बख्शन हार। आपे वेख सुने आप सब सह दे आधार। सब मह एक वर्तदा सिर सिर करे विचार। गुरमुख आप विचारी है लग

जल पाई विचों आप गवाई, नानक जिस बिन चसा न जीव दी सो सतगुर दिया मलाई। पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई, तू करता गोविंद

बेनती करे कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास ना उतरै छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुख दाता बेअंत है गुण दाता निधान। नानक गुरमुख बख्श लए अंत बेली होए भगवान। पौड़ी आपे जगत अपाय कै गुण औगण करे विचार। त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार। गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर। जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार। जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। चलोक महला पंजवां रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ। राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन। नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन। पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई। जे सतगुर अगै घालिया पोहे ना सकै जमकाल। सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया। मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया। सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

सच सुमाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सोहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजई एक गावे है राग परियां राग ना पीजई एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजई एक अन्न ना खाहे मूर्ख तिना क्या कीजई तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजई कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पीजई हर भगती असनेह गुरमुख कीजई सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिऐ सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाए नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाही फसल आहारी

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे उहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सख्त

भूख सनावे, खसमै मूल ना पावे, अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाई, खसमै पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाई खुदाई, नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेवया तिन्नी सुख पाया।

0: सलाहिय
1: अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे

अंध मन, मन अंध है ताने अंध, चिक्कड़ लाया क्या थी है, जहां टूटा पत्थर बंद, बंद टूटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नाम विण, केते डुबे साथ महला पहला, लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिरसा, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लखी घोड़ी बादशाह, जिथे शायर लंघना, अगन पानी असगाह।

सच जानिए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए भौजल तारन हार शब्द पछाणिए चोर जार जुआर पीड़े कहानिए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए गुरमुख।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे बख्शमल।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

हे गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जा कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक शिपा व्यास मह लेखी है सनक मह पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कै ईद बक

हम अचेत अचेत न जानह गत मित गुर किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम कट देवो ही अरातेन हर के संत मिले हर मिलया हम की

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन यारे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया लुभ दो पुत्र कलत्र मोह प्रीत जैसे तरवर की तुष छाया तो

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहा जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आनदो आनंद पाज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम अपदेश गुरु गुर सत गुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे पाज राम राम राम सब श्रेष्ठ धार।

स्वामी ते सुख फल पावह ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत हुए सगल सिद्ध रहाउ सिमरत नाम मन साधार है वोट पराधी खिन महतार है जा को चीत आवै गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने रहाउ ता कै हिरदय बस्यो नाम जा को स्वामी कीनो दान ता कै हिरदय आई शांत ठाकुर भेटे।

रचना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब

कैन संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जा कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यों।

जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहिया प्रभ एक है। पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो ओह कृपाल ता भौजल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया।

धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाय रहाउ। ईत ऊत कहाँ लुभाव है एक स्यो मन लाय। महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरण आयु

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

कट कट पूर रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण। मनह प्रगास भयो भ्रम लास्यो, मंत्र दियो गुर कान। करत रहे करतग है करना मैं, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन कहो हर दान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन कहो कई केत। ऐसो जन बिरलो है सेवक,

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवां, आनंद रंग बनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण अधारे रहा।

टुलेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरसना।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अतरहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाहे अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण नदान प्रगट्यो एह चोले, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निद, जन नानक संतरे नाई।

बिंद सासन निसपोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर कानड़ा।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावै गु, राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु, नाम सुनै नामो मन पावै, नामे ही तृप्तावै गु, कनक

आया पटल पटल है पारी कर घूमन घेर कला वह गो पाप बकार मनूर सब पारी दिख दुत्तर तरियो ना जावै गो पौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया

हर हर नाम तरावै गु, जो जो जपै सोई गत पावै, ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ। कृपा कृपा कृपा कर हर जियो, कर कृपा नाम लगावै गु, कर कृपा सतगुरु मलावहु, मिल सतगुर नाम त्यावै गु। जन्म जन्म की हम मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गु, ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट, लग शब्द गुरु हर पावै गु। संगत संत मिल हो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गु, बिन संगत कर्म करै अभमानी, कड पानी कीकड़ पावै गु। भगत जना के हर रखवारी, जन हर रस मीठ लगावै गु, खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुर उपदेश समावै गु। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवह ता फल गुण पावै गु, जो निंदा दुष्ट करह भगता की, हरनाक्ष ज्यो पच जावै गु। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गु, जो जो भगत होए सो पूज हो, परमन परम चुकावै गु। जात निजात देख मत परम हो, सुख जनक पगी लग त्यावै गु, जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल ना डलावै गु। जनक जनक बैठे सिंघासन, नौ मुनि धूर लै लावै गु, नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावै गु। कानड़ा महला चौथा, मन गुरमत रस गुण गावै गु, जिहवा एक होए लख कोटि, लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ। सहस फनी जप्यो सेख नागै, हर जपत्या अंत न पावै गु, तू अथाह अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावै गु। जिन तू जप्यो तेई जन नीके, हर जपत्यो कौ सुख पावै गु। बिदरदासी सुत छोक शोहरा, कृष्ण अंक गल लावै गु, जल ते ओपत पई है कासत, कासत अंग तरावै गु। राम जना हर आप सुवारी, अपना बिरद रखावै गु, हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर, गुरसंगत नाव तरावै गु। ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो, संत जना मन पावै गु, खरे खरोए बैठती उठत, मार्ग पंथ त्यावै गु। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पाधर मुक्त जनावै गु, सासन सास सास बल पाई है, निह सासन नाम त्यावै गु। गुर प्रसादी हम मैं बूझै, तौ गुरमत नाम समावै गु। सतगुर दाता जी जीअन को, भागहीन नहीं पावै गु, फिर एह वेला हाथ न आवै, पर तापै पछतावै गु। जे को भला लोड़ै भले अपना, गुर आगै तह तह पावै गु। नानक दया दया कर ठाकुर, मैं सतगुर भस्म लगावै।

तल कुंडे गुरियंकस शब्द दरड़ावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिव लावैगु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चुवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिव लावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुरखिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

लै खर्च चले पत पावै गू, खाए खर्च दे वह बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवै गू। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुर

आए जतन माया के काम न आए राम ते आए सब फल पाए तन तन ते बड़ भागिया सतसंग जागे नाम लागे एक स्यों लिव लागिया तज मान मोह बेकार साधु लग तरहु तिन कै पाए बिनवंत नानक शरण स्वामी बड़ भाग दर्शन पाए मिल साधु नित भजह नारायण रसक रसक स्वामी गुण गायन गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह जन्म मरना भागे सतसंग पाई हर त्याई बहुड़ दुख ना लागे कर दया दाते पुरख बधाते संत सेव कमायन बिनवंत नानक जन तूर बांछ हर दर्श सहज समायन सगले जंत भजो गोपाल जप तप संयम पूरन काल नित भजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सुबाया गोविंद गाय नित त्याय प्रवान सोई आया जप ताप संयम हर हर निरंजन गोविंद धन संग चाल बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रत्न बंध हो पाल मंगल चार चोज अनंदा कर कृपा मिले परमानंदा प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

वर्तै सब जगत किया बणजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सतगुर कै पग पाह सत संगत हर मेल प्रभ

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वरतदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपा

उठा हर कव सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जन हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस से गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सत गुरु गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्निया जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिया तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चत साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर पाई हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हम वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे राम राम राम रमीत घट घट।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाए, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी। तुदे आपे जगते पाए कै, तुदे आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हरायन, एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है, गुरबचन सुभागै लीता। दुख दालद सबो लह गया, जा नाम गुरु हर दीता। सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत अपाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हों मैं रोग है, भ्रम पूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम संघार।

जल थल मही अल पूर्णो अपरंपर सोय जी जंत प्रतपालदा जो करे सो होय मात पिता सुत भ्रात मीत तिस बिन नहीं कोई घट घट अंतर रव रहया जपयो हो जन कोई सगल जपो हो गोपाल गुण प्रगट सब लोई सलोक महला चौथा गुरमुख मिले से सजना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाहे तू लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब तुदै नु आराध दे दान दे प्यारे हर दाता दातार हाथ कढ़िया मीह उठा संसारी अनजमिया खेती भाव कर हर नाम समारे जन नानक मंगै दान प्रभ हर नाम अधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपी है सुख सागर हर के चरण आराध्य है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार होए हाटै जम कागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर।

वै जन्म जन्म की मल उत्तर है मन चिंदिया पावे आवन जाना मेटी है हर के गुण गावे आप तरह संगी तराही सब कटम तरावे जन नानक तिस

हरि तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरों दिन राती मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहा पया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नान

सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गावह गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचह प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीयन के तुम जानहु हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावै प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिलै प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दरगह प्रभ लेखा मांगे तह छूटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हों मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नावाई सब किल विक पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंति अवसर आए बनत है तह राख नाम साथी जन तेरा जस गावह हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुड थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ

यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुग्ध इयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

नारायणी सगल भगत जाच है सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राख है जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

परस रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

नैन बैन सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। एते उत दह दिस रवियो मेर तिन्ह समान जात कता तत पेखी है हर पुरख।

वेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहा करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरू रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंदरा कै दर सरन परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहू कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन।

मन तन जापिया भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्ब कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरे आ करूं दिन रहन सेव नानक।

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान। सर्ब कटां के दाते स्वामी, देहे सो पहरन खान। सुरत मत चतराई।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हूँ जग थमन को थम दी जय। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परी जय। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मली जय। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दी जय। साधु साध साध मन प्रीतम।

अभाग अभाग है जिनके तिन साधु तूर ना पीजै तिन्ना तिसना जलत जलत नहीं बूझ दंड धर्म राय का दीजै सब तीर्थ वर्त जग पुन किए हिवै गाल गाल तन सीजै अतुला तोल राम नाम है गुरमत को पुजै ना तोल तलीजै तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जान है जन नानक सरन परिजै तू जल निद मीन हम तेरे कर कृपा संग रखीजै कल्याण महला चौथा रामा राम रामो पूज करीजै मन तन अर्प धरो सब आगै रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै रहाउ ब्रह्म नाम गुण साखत रोवर नित चुन चुन पूज करीजै आत्म देओ देओ है आत्म रस लागै पूज करीजै विवेक बुद्ध सब जग मह निर्मल विचर विचर रस पीजै।

निर्बदीजै मन मोती साल है गुर शब्दी जित हीरा परख लीजै संगत संत संग लग उच्चे।

मिल संगत जित हर रस काढ कढ़ीजै पर उपकार बोलै है बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै सर्ब जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करीजै कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करीजै जब लग सास होए।

भवन पवित होए सब जह साधु चरण तरी जय तज लाज अहंकार सब तजी है मिल साधु संग रही जय धर्म राय की कान चुकावे बिख डुबदा काड कड़ी जय परम सूके बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरी जय ताते बिलम पल ढिल ना की जय जाए साधु चरण लगी जय राम नाम कीर्तन रत्न वथ हर साधु पास रखी जय जो बचन गुर सत सत कर मान तिस आगे काज तरी जय संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढ़ी बाह को कीजै जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ हो ता सतगुर शरण पवीजै जे वड भाग होए अत नीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीय सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार लद ली।

आई प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए इहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाओ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

एक वार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई

आई मन चित बहुत बफावे एते गुण एतिया चंगियाईया दे ना पछोतावे तुद सलाहन तिन धन पल्ले नानक का धन सोई जे को जियो कह ओना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निवरही है। गुरमुख जी प्राण उपजै गुरमुख सेव कर जाइय गुरमुख नानक सच समाई है। गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

पंच तस्कर तावत राखी चूका माने अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान हिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया जावत क्यों राखिया जाय जिसते हुआ सोई पर जाने जा उस ही माहे समाए तू है वाहो तेरी राजाई जो किछ करह सोई पर होए बा अवर ना करना जाय रहाओ जैसे हरहट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही एहो खेल खसम का ज्यों उसकी वड्याई सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी।

कर मानिया नानक गिरी उदासी सो परवान प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बंद है हौ तिसकै बल जाई पाप पुन की सार ना जाने भूला फिरे अजाई बोलो सच नाम कर।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक।

आई जात जन्म नह पूछी सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

कहावै सोई। प्रभाती महला पहला खाया मैल बधाया पहंदै घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावै बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारिया छूटस साच नाई। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुखमूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

जर चर अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सह थे पावे राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया अगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागै, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवै, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महल

तम हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाईऐ प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोह फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। दिख पौ जल डुब दे काड ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक। जैसे शिंगार करै देह मनुख नाम बिना नकते नक कीक। घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब मह ईक। जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो सब किल विख पाप लहे। जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो। मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर धरयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर। हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने हियरै। हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमुखफा। हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बसफा रहाउ। काया नगर वसेउ घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन पए सोहेले मुख उजल गुरमुख तरफा। अनुपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारियो गुर निमुख पा। कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा। तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख फा। हर हर आप धरयो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा।
प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कडबा जप मन राम नाम अर धम्बा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उरतार्यो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पोत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम शरण भा।

पानी। मन सतगुर सेव होए परम गति, हरख सोग तेरह निरारा, तां तू पावह प्राण पते रहाउ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे, कोट पराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार,

रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के हाँ।

देवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की हम

त्याग नाम हर जीदा किस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवार।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

जो तिस पावै सो पल होस। तिस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई। ऐसा गुर पाई है वड भागी, जिस मिलते

होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिनसे काम क्रोध अहंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार। प्रभाती महला पंजवां गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा।

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा पुरबान जाई गुरपुरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्ब कल्याण सूख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती महल

इस लोभ मोह बिन सजाए हम ताप रहाऊ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित जाहे पाप नानक बारक कछु ना जाने राखन को प्रभ माई बाप प्रभाती महला पंजवां चरण कमल सरन टेक ऊच मूच बेअंत।

अनेक प्रभाती अष्टपदियां महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने शब्द विचार पौ सागर तरे रहाउ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

दुष्टि सभा विगुतीय बिकवाती जीवन बाद। हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चलह चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुधै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागे सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अवमान ना जाई जियो अवमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत।

आऊ। इस मन माया मोए बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोलै लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरै सहला जीवै सोई। बिन गुर सूझी किसै ना होई, आपे करै करावै सोई। झगड़ चुकावै हर गुण गावै, पूरा सतगुर सहज समावै। एहो मन डो

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हऊ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई है,

कौन, त्रै मिल जगते उपाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया, ऐसे जन विरले जागे अंदर परख।

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय, प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह हऊ मैं मैल उतार, सदा जागह कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ह मार, मन मेरे गुरमुख नाम त्याय जित मार्ग हर पाई, मन से ही कर्म कमाई रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हऊ मैं विच जागरण ना होवई।

गुर पाईए उपाय किते न पाया जाई। सतगुर ते सहजी उपजे हउमै शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग। नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यों ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दोहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाई अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया इह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिबलाई इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग प्रभ

क्या सोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो परस

कही है सोई। अल्लह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

है आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लकाया।

भज जन्म सिरात है कहूं कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे गोविंद।

कारण करते वस है जिन काल रखी धार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

आदि कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत है कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्धं अच्युत तन है किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुत है त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बहक्रम कनक कुंडलै विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरन संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसयंतरिक्षं त्यागमानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेता गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विध प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य बैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध सुवज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं न लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निर्तनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करना मय घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचलते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान

पंच तस करह मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततह कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रत

प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है, कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपं नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता विलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं

जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्याते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं पै पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं बसंते समीप केह रह ततरगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते छलं छिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं।

पाल नाम रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभु पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलय गुण निधान सिम

हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहु मर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करन हारं नम शिकारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त शत्रुं दृढ़न्त अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे।

दुत्र है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है, भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है, जेन कला धार्यो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं, जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रोगण है, तेन कला अस्तंभं सरोवरं, नानक नह सिजंत तरंग तोयण है, गुसाई गृष्ट रूपेण, सिमरणं सर्वत्र जीवन है, लब्धहं संत संगेण, नानक श्वास मार्ग हर भगतन है, मस्कं पगनंत सैलं, कर्दमं तरंत पपील कह, सागरं लगंत पिंगं, तम प्रकाश अंध कह, साध संगेण सिमरंत गोविंद, शरण नानक हर हर हरि, तिलकहीनं जथा बिपरा, अमरहीनं जथा

असाध पूरन अगम तीर नह लंग नह पाज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगले अंग रोग खंडन है।

अंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटांब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग ता मेरंग सहकंग ता हरियंग बूडंग ता तरियंग ऊणंग ता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म

हथ चलंथु पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लभदे हम साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलह गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्ध बड़ भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो।

आप ज संग मटंत सत पुत्र है, सिमरतव्य है हृदय गुरमंत्रण है, प्रीतम भगवान अच्युत, नानक संसार सागर तारण है, मरणंग विसरणंग बिंद है, जीवनंग हर नाम त्यावण है, लभणंग साध संगीन, नानक हर पूर्व लिखण है, दसन बिहून पयंगं, मंत्रं गारडी निवारं, ब्याद उपारण संतं, नानक लब्ध कर्मण है, जात काथ रमणं, शरणं सर्वत्र जियण है, तात लगणं प्रेम नानक, प्रसादं गुर दर्शन है, चरणार बिंद मन भिद्यं, सिद्धं सर्व कुशलन है, गाथा गावंत नानक, पभ्यं परापूर्वण है, शुभ बचन रमणं, गवणं साध संगेन उदरण है, संसार सागरं नानक, पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं, एकंकार नाम उरतारं, कुलह समूह सगल उदारं, बडभागी नानक को तारं, सिमरणं गोविंद नामं, उदरणं कुल समूहण है, लब्धं साध संगेन नानक, बडभागी भेटंत दर्शन है, सर्व दोख प्रंत्यागी, सर्व धर्म दृढ़ंतरण है, लब्धेन साध संगेन नानक, मस्तक लिखियण है, होयो है होवंतो, हरण भरण संपूर्ण है।

कसों वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहि महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुखों तोहारिया, मोही देख दर्स नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाइए, हर हां मस्तक होवै भाग तां साजन पाइए, सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवै कंत तां सब किछ पाइए, हर हां कंतै बाज शिंगार सब बिरथा जाइए, जिस घर वसिया कंत सावड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हरे हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया, आसा इती आस के आस पुराइया, सतगुर भए दयाल तां पूरा पाइया, मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हरे हां सतगुर भए दयाल तां मन ठहराया, कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया, दुत्तर

वह सच धना सुपन उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

की दम के हो होती साट रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आ।

आय प्रभु साकत बापरे जो हाथ है हाथ बिकाय कबीर साकत ऐसा है जैसे

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया।

एक हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शतर।

अजो सोना उस समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाहेंगे शूट, कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने घर लावे आग।

गोर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दोहरा लीन कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिए रोए अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

उत्तम पये लोहो काठ निर्गंध कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओहो नहीं सहया जाए एक जो साधु मोहे मिलियो इन लिया अंचल लाए कबीर बैद कह हो ही भला

वीरन मैया कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकारै चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सभाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

जान कै जग मह रहियो समाए, जिन हर का नाम ना चेतो बद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास, नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार गद ही हुए कह अवतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हो फिरे मांदल कंध चढ़ाए।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोय, पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधे हो जे

कहबे को सूबा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा उही रहो हर खुगुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह जाग रोए पै दुख जा का बासा गोर मह सो क्यों सो है सुख कबीर सूता क्या करह उठ के ना जपह मरार एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राख आछा गांव ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का तज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए ताहे

ऐसा चाहिए ज्यो पानी सर्वंग, कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता हुए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए, कबीर पाटन ते उजर भला

बहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी जब

मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जानै नाही कोई कै जानै आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल।

जा चढ़ है साई ना बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेक सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत।

हलाल। दफ्तर लेखा मांगिया तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मह अमृत लोन। हीरा रोटी कारने गला कता वै कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप। हरख सोग दाजै नहीं तब हर आप है आप। कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार। सोई राम सबै कह सोई कौतक हार। कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह।

आई। ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

रह जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुल्म है।

हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू कबीर बिका।

अस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्वली भावनी प्रगट होई आए कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाए धरती भार ना

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम।

फिर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आहर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पंजा।

नाम जानियो नहीं पाले हो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बम्ब कबीर आखी केरे माट के

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजे आबाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाईए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो।

आमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत ढोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाई, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। हे नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड्डियां

आए हरिदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांजा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद।

कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढोई ना लह पेयह नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन

कितनी जोबन प्रीत बेन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गई एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहो के रहे कम फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो करियाल एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल करिए करिए मार।

फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढे क्या होवै चिक्कड़ डुबे हाथ फरीदा नंदी कंत नारावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछां पी पलियां।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारण जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

आस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम...

भीतर उठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडिए सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैण मिंदरावले तिन्ना मिलन कुआओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवां फरीदा भूम रंगावली

सो सजन वीही एक टोंडेंदी नालाहा तुखां ज्यों मालीही कारण तिना मां फिरी फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं वहन जो जो मंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करया करे।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गए वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

फरीदा हो बलिहारी तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन कथाऊ नाही फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे जिन्नी वेसी सौ मिले सही वेस करे महला तीजा काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी स्यो किबे ज्यो मेहा फरीदा किन्ना मुख डरावणी जिन्ना वसारियों नाऊ ऐथे दुख कनेरिया अगे ठौर ना खां फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह पावे सो भला तां लभी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी बजाई वजदी तू पी वजह नाल सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवा फरीदा दिल रखा इस दुनी स्यों दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडेंदिये सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाऊ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन होण नजीक खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्ने चालिए दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हों टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुए बग बप्पड़े सिर

जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हौ करी जित वासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वासिया भी कंत मत हुंदी होए आना तान हुंदे होए नताना अनहुंदे आप बंडाए वो ऐसा भगत सदाए एक

बल बल सद बलिहार अमृत परवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओपत परलो एकै निमक तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाना खां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन धारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे हो सब।

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार।

हर अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैक मन सब

पव जल तरना, बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे, बले ओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर पवन मह।

मद माता विचरत बिकल बढ़ो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

अवधारण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अरबंदप बूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

ज्ञान हे भगवंत कृपा कर तारहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीसर।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझ समझावत माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयू है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल।

हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

लोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायु गुण गावह पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवे जेन चक्रवै कहायु गुण गावै बल राऊ।

चिरै सदा गुर संग रहंतौ दूरबा परूरौ अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

निवै खवै कस बिमल बीचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परसे कल समुल वै।

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रदान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अमरीक भवजन तरिया।

गुर अमर पणित जै नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

जानियो सुपन एक प्रतख एक एक समह लीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास।

गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक असास है। गुरु अमरदास परसी है ध्यान लही है पौ मुक है। गुरु अमरदास परसी है अपौ लबे गौ चुक है। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दारत इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिल है। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहेउ। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहेउ। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण वखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियु निरंक।